0: रेडियो अरुण अरुण
1: 97.6 MHz
0: हरपल
1: हर तपाईसँगै।
2: रेडियो अरुण टाइम चेक
3: इट्स 6 AM
4: अहिले बिहानको 6 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 8 AM
3: अहिले बिहानको 8 बज्यो।

0: रेडियो अरुण 97.6 MHz हर पल तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: It's 10 AM
3: अहिले बिहानको 10 बज्यो।

0: छोट जति पकाए नि मान्दिन खाना छि के छ र मेरो खोट। नमस्कार, म गायक अनन्त घिमिरे, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ लेख बेसीको धुन, रेडियो अरुण, सधैँ सुन्नुहोस् है।
1: हाइराइट्स नेपाल कम्प्लिट डिजिटल इन्टरटेनमेन्ट हाउस।

0: रेडियो अरुण
1: अरुण
0: 97.6 MHz
1: हर पल
0: हर तपाईं सँगै।
2: रेडियो अरुण टाइम चेक
3: इट्स 5 PM
4: अहिले अपराह्नको 5 बज्यो।

0: रेडियो अरुण
1: अरुण
0: 97.6 MHz हरपल
1: हर
0: तपाईं सँगै।
2: रेडियो अरुण टाइम चेक
3: It's 6 PM
4: अहिले साँझको 6 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल हर तपाईं सँगै
1: रेडियो अरुण टाइम चेक 7 PM
2: अहिले साँझको 7 बज्यो।

0: शेष राज दाहाल भाद्रपुर झापा
1: स्वर्गीय नयाँ प्रसाद दाहाल स्मृति छात्रवृत्ति अक्षय कोषका संस्थापक स्वर्गीय भू लक्ष्मी दाहाल माटी नगरपालिका पाँच
0: आजीवन सदस्य स्वर्गीय श्री मनरथ दाहाल माटी नगरपालिका पाँच कोपिले
1: आजीवन सदस्य स्वर्गीय वेदनिधि कोइराला माटी नगरपालिका चार
0: प्रशिक्षक स्वर्गीय प्रमोद काफ्ले पाँच भवन नगरपालिका
1: स्वर्गीय भीम गुरु देवकी देवमाया दाहाल स्मृति अक्षय कोषका संस्थापक स्वर्गीय गोपी रमण दाहाल माटी नगरपालिका चार ओखरबोटे
0: जग्गादाता तथा आजीवन सदस्य स्वर्गीय चिया देवी दाहाल माटी नगरपालिका पाँच शमशेरे
1: आजीवन सदस्य पुण्यमाता दाहाल माटी नगरपालिका पाँच
0: आजीवन सदस्य स्वर्गीय रुक्मिणा दाहाल माटी नगरपालिका पाँच हाल अमेरिका
1: आजीवन सदस्य स्वर्गीय विष्णु कुमारी दाहाल माटी नगरपालिका छ
0: आजीवन सदस्य स्वर्गीय पदम कुमारी अधिकारी माटी नगरपालिका पाँच
1: स्वर्गीय रुद्र प्रसाद दाहाल स्मृति अक्षय कोषका संस्थापक 2021 को एसएलसी ब्याच स्वर्गीय गोपाल प्रसाद काफ्ले गौरादह
0: मानर्थ सदस्य स्वर्गीय लीलादेवी दाहाल माटी नगरपालिका पाँच हाल सुन्दरहराई चम्मोरङ
1: विद्यालय संस्थापकका परिवार यस विद्यालयलाई हर तरहले सहयोग पुर्याउनु भएका भोलानाथ दाहालकी धर्मपत्नी स्वर्गीय मनोरमा दाहाल माटी नगरपालिका पाँच कोपिले हाल विराटनगर
0: र आजीवन सदस्य स्वर्गीय खेलनाथ दाहाल गोपालबा माटी नगरपालिका चार ओखरबोटे
1: माडी माध्यमिक विद्यालय माडी नगरपालिका पाँच सङ्खुवासभा।

0: रेडियो अरुण अरुण
1: 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
2: रेडियो अरुण टाइम चेक,
3: इट्स 8 PM।
4: अहिले रातको 8 बज्यो।

0: विजय लिम्बू, पाँच खपन नगरपालिका एक कुशुवा संखुवा सभा हाल मलेसिया।
1: सन्तोष यखा, चैनपुर नगरपालिका एघार लोहाकोट संखुवा सभा हाल कुवेत।
0: प्रदेशी ललित बल, भोजपुर एक भांगराङ भोजपुर हाल सऊदी अरब।
1: विश्वजीत दिमी, धर्मदेवी नगरपालिका दुई तामाफोक संखुवा सभा हाल कतार।
0: नवीन गुरुङ, पाँच खपन नगरपालिका नौ संखुवा सभा हाल मलेसिया।
1: शुक्रराज यखा, चैनपुर नगरपालिका दस खराङ संखुवा सभा।
0: गजेन्द्र जिमी, चैनपुर नगरपालिका एघार लोहाकोट संखुवा सभा।
1: सन्तोष काफले, सदानन्द नगरपालिका आठ दिङला भोजपुर।
0: सुरज राई तुम्सा, पोवादुम्मा गाउँपालिका पाँच भोजपुर हाल मलेसिया।
1: र सुमिता याखा लिम्बुखिम, चैनपुर नगरपालिका दस खराङ संखुवा सभा।

0: रेडियो अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक, इट्स 9 PM।
2: अहिले रातको 9 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 5 AM
3: अहिले बिहानको 5 बज्यो।